फिर करे परियो भक्त में फिर से जन्म गयो सा संग भगवान भजन में न कही न सच रहो राहो ज्यो ध्यान कुसुम पुर भुलत किन न कराओ लयो सहसे प्रमत अनेक जन्म है फिर काल आयो या तन जोबन हर सुधारा पेखन को जो दयो तेनी माटक जो युर्जे इंद्री प्रेर लयो औ दिन लतन तिन को मंदिर चौदह ठा ठयो कह कबीर पै सागर करन को मैं सतगुर उठ लयो गौड़ी पानी मैला माटी गोरी इस माटी की पुत्री जोरी मैं ना ही कछाए न मोरा तन तन सब रस गोबन तोरा रहो इस माटी में पौन समाया झूठा प्रपंच जोर चलाया किनू लाख पांच की जोरी चनकी बार गगरिया फोरी कह कबीर एक नी वसारी खरमे बंस जाए अंकारी गौड़ी राम जपो जी ऐसे ऐसे रूप प्रहलाद जप्यो हर जैसे दीन दयाल परोसे तेरे सब परिवार चढ़ाया बेड़े राहो जद पावे ता हुक्म नावे इस बेड़े को भार लंघावे गुर प्रसाद ऐसी बहुत समानी क्यों गई फिर अमन जानी कौ कबीर प्रसंग पानी परिवार पार सबे को दानी गौड़ी जोन शार जो जग में आयो लागत पंख समरायो जीरा हर के गुना गाओ रहाओ गर्भ जोन में और तब करता जो ठकर गन में रहता लाचरा सी जोन प्रम आयो अब के छुटके ठहो नठायो कौ कबीर पज सारंग पानी आप दिसे जात न जानी गौड़ी पूर्वी सुर्ग वासना भाषिये डरिए न नरकनवास होना है सो ही है मन न कीजिए आस रमैया गुण गाइये जाते पाइये परम दान रहाओ क्या जाप क्या तव संजमो क्या व्रत क्या स्नान जब लग जूत न जानिए भाव भक्त परवान संते देखना हरकिए विप्त देखना रोए जो संते त्यों विप्त है बदन रचिया सो होए कौ कबीर अब जानिया संतन हृदय मुजार सेवक सो सेवा भले जे कट बसे मरार गौड़ी रेमन तेरो कोय नहीं खिंच ले जेना कट कट बसे मरार रेमन तेरो कोय नहीं खिंच ले जेन पार बिरक बसेरो पंखो कैसो है संसार राम रस पिया रे जे रस बिसर गए।

0: केवो दी रंगीली तरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CIFK 94.3 तो सुन रहे हो। ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि एक प्रोग्राम नू होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नू पता ही है, जे नहीं तां ओ भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अति फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
1: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

मानस की जात सदै कह पहचान लो। इतिहास के कुछ कु पन्ने आप सब के सामने जिन्हां विच कुर्बानियां दी कहानी है जां महापुरशां दी बाणी है, जिन्हां विच मनुखता दा जिक्र अते इंसानियत नूं बचाउण दा फिकर है।

0: सन्मानीय गुरु शासनजी विचार आरंभ करिए। प्रथम फतेह कबूल करने
1: जीवन तो निराश, संसार को उदास, परिवार को विपरीत, पदार्थों को निर्मोह और इसी तरीके न दुनियावी सुखों को निराश मनता नहीं परमात्मा की तलाश की, ईश्वर की तलाश की थी। आशा कहते हैं ऐसी व्यवस्था बिना जीवन

पाल कहियत है अत पुज भयो अपारला फेर दिया देहरा नामे कहो पंडियन कहो पिछवारला मलार बाणी भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद नागर जना मेरी जात बख्यात चम्मारंग हृदय राम गोविंद गुण सारंग रहाओ सुश्री सलल कित बारो नीरे संत जन करत नहीं पानंग सुरा अपवित्र नत अवर जल रे सुरसरी मिलत नह होए आनंग तर तार अपवित्र कर मानी है रे जैसे कागरा करत बीचार भगत पागहुत लिखी है तेहे उपरे पूजी है कर नमस्कार मेरी जात कुट बांडला ढोर टो अंता नित है बनारसी आस पासा अब बिपर प्रधान तेह करह दंडोत तेरे नाम सुननाए रविदास दासा मलार हर जपत तेउ जना पद्म कवलास पत तास सम तुल नहीं आन को एक ही एक अनेक हुए बिस्तरेउ आन रे आन भरपूर सो रहाउ जाके भागवत लेखी है अवर नहीं पेखी है तास की जात अशोक शीपा व्यास मह लेखी है सनक मह पेखी है नाम की नामना सप्त दीपा जाके ईद बकरीद कुल ग

सोई सोई फाट्यो, झूठे बनज उठ ही गई हाट्यो। कहो रवदास पयो जब लेखो, जोई जोई कीनो

तेरा मन साध जना मिल हरिया कौ बल बल बल बल साध जना कौ मिल संगत पार उतरिया रहाओ हर हर कृपा करहु प्रभ अपनी हम साध जना पग परिया तन तन साध जिन हर प्रभ जानिया मिल साधु पतत उधरिया मनुआ चलै चलै बहु बहु बिद मिल साधु वसगत करिया ज्यों जल तंत पसारियो बदक ग्रस।

चतुर्थ गया सब नीकर ज्यो साबुन कापर करया मस्तक ललाट लिखिया तुर ठाकुर गुर सतगुर चरण उर धरिया सब दालद दुख पांच प्रभ पाया।

रहाउ। हम अचेत अचेत न जानह गत मित, गुरु किए सुचित चितेन, प्रभ दीन दयाल कियो अंगीकृत, मन हर हर नाम जपेन, हर के संत मिलह मन

तुम हर साहा वड्डे प्रभ स्वामी हम बनजारे रास देन जन नानक को दया प्रभ धारहु लद वाखर हर हर लेन कानड़ा महला चौथा जप मन राम नाम परगास हर के संत मिल प्रीत लगानी विचे ग्रह उदास रहाओ हम हर हृदय जपयो नाम नर हर प्रभु कृपा करी कृपास अन दिन आनंद भया मन बिगसिया उदम भय मिलन की आस हम हर स्वामी प्रीत लगाई जितने साथ लिए हम ग्रास किल बिख दहन भय खिन अंतर टूट गए माया के फास क्या हम किर्म क्या कर्म कमाव है मूर्ख मुग्ध रखे प्रवतास अवगनियारे पाथर पहारे सत संगत मिल तरे तरास जेती सृष्ट करी जगदीस्तर ते सब ऊच हम नीच बिखे

गुरवाक हर हर कृपा करी जगदीश्वर दुर्मत दूजा पाओ गयो सब चाक रहाओ नाना रूप रंग हर केरे कट कट राम रवियो गुपलाक हर के संत मिले हर प्रगटे उगर गए बिछिया के ताक संत जना की बहुत बहु शोभा जिन उड़तारियो हर रस कर साक हर के संत मिले हर मिलिया जैसे गऊ देख बचराक हर के संत जना मैं हर हर ते जने उत्तम जनक जनाक तिन हर हृदय बास बसानी छूट गई मुश्की मुश्काक तुमरे जन तुम ही प्रभ किए हर राख ले हो आपन अपनाक जन नानक के सखा हर भाई मात पिता बंदप हर साक कानड़ा महला चौथा मेरे मन हर हर राम नाम जप चीत हर हर वस्त माया गढ़ वेड़ी गुर कै शब्द लियो गढ़ जीत रहाव मिथ्या भरम भरम बहु भ्रमिया लुभदो पुत्र कलत्र मोह प्रीत जैसे तरवर की तुच छाया खिन मैं बिन सजाए दे पीत हमरे प्राण प्रीतम जाने उत्तम जिन मिलिया मन हुए प्रतीत पर चै राम रविया घट अंतर अस तिर राम रव

है ना उतरे कब हूँ, हर हर जाय मिले हर प्रीत। हम बहु पाप किए अपराधी, गुर काटे कटत कटीत। हर हर नाम दियो मुख औखद।

ब्राह्मण केर परे बिख बिखिया, सतगुर काढ लिए दे हाथ रहाओ। स्वामी अपै निरंजन नरहर, तुम राख ले हो हम पापी पात। काम क्रोध बिखिया लोभ लुभते, काष्ट लोहो तरे संग साथ। तुम वड पुरख बड अगम अगोचर, हम ढूंढ रहे पाई नहीं हाथ। तू परे परे अपरंपर स्वामी, तू आपन जान है आप जगन्नाथ। अदृष्ट अगोचर नाम तिहाय, सत संगत मिल साधु पाथ। हर हर कथा सुनी मिल संगत, हर हर जपेओ अकथ कथ काथ। हमरे प्रभ जगदीश गुसाई, हम राख ले हो जगन्नाथ। जन नानक दास दास दासन को, प्रभ करहु कृपा राखो जन साथ। कानड़ा महला चौथा पड़ताल कर पंजवा।

कुल सगल तराधु कानड़ा महला चौथा हर जस गावो भगवान जस गावत पाप लहान मत गुरमत सुन जस कान हर हो किरपान रहाओ तेरे जन त्याव है एक मन एक चित ते साधु सुख पाव है जप हर हर नाम निदान उस्तत करह प्रभ तेरिया मिल साधु साध जना गुर सत गुरु भगवान जिनकै हृदय तू स्वामी ते सुख फल पाव है ते तरे भव सिंध ते भगत हर जान तिन सेवा हम लाए हरे जन नानक के हर तू तू तू तू तू भगवान कानड़ा महला पंजवां घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद गाइया गुण गोपाल कृपा निध दुख बदारन सुख दाते सतगुर जां को भेटत होए सगल सिद्ध रहाउ सिमरत नाम मनै साधारै वोट पराधी छिन मह तारै जा को चीत आवै गुर अपना ता को दुख नहीं तिल सुपना जा को सतगुर अपना राखै सो जन हर रस रसना चाखै कहो नानक गुर कीनी मया हलत पलत मुख उजल भया कानड़ा महला पंजवां अरादो तुझै स्वामी अपने उठत बैठत सोवत जागत सास सास सास।

रसना अनक बार कर बंदन संतन ऊहा चरण गोविंद जी के बस न रहाव अनक भांत कर द्वार न पावो होए कृपाल ता हर हर त्यावो कोट कर्म कर दे न सोदा साध संगत मेहमान पर बोधा त्रिशन्ना बूजी बहु रंग माया नाम लैत सर्ब सुख पाया पार ब्रह्म जब भय दया

हर नामा जप परम गते रहाओ, पूजा चरना ठाकुर सरना, सोई कुशल जो प्रभ जियो करना, सफल होत ए दुर्लभ देही, जां कौ सतगुर मया करे ही, अज्ञान भरम बिनसै दुख डेरा, जां कै हृदय बसै गुर पैरा, साध संग रंग प्रभ त्याया, कहु नानक तिन पूरा पाया, कानड़ा महला पंजवा, भगत भगतन हूं बन आई, तन मन गलत भए ठाकुर।

तेरो जन हर जस सुनत उमाहयो रहाओ मनह प्रगास पेख प्रभ की शोभा जत कत पेखो आहयो सब ते परे परे ते उच्चा गहर गंभीर अथाहयो ओत पोत मिलियो भगतन को जन स्यो परदा लाहयो गुर प्रसाद गावे गुण नानक सहज समाध समाहयो कानड़ा महला पंजवा संतन पह आप उदाहरण आयो रहाओ दर्शन भेट होत पनीता हर हर मंत्र गरड़ायो काटे रोग पय मन निर्मल हर हर औखद खायो आस्थित पय बसे सुख थाना बहुर न कतहु तहायो संत प्रसाद तरे कुल लोगा नानक लिपत नाम आयो कानड़ा महला पंजवा बिसर गई सब तात पराई जब ते सात संगत मोहे पाई रहाओ ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हम को बन आई जो प्रभ कीनो सो पल मान्यो एह समत साधु ते पाई सब मह रव रहया प्रभ एक पेख पेख नानक बिगसाई कानड़ा महला पंजवा ठाकुर जियो तुहारो परना मान महत तुम्हारे ऊपर तुमरी ओट तुम्हारी सरना रहाओ तुमरी आस भरोसा तुमरा तुमरा नाम हृदय लै तरना तुमरो बल तुम संग सुहेले जो जो कहो सोई सोई करना तुमरी दया मया सुख पावो ओह कृपाल ता भौजल तरना अपै दान नाम हर पायो सिर डारियो नानक संत चरना।

एकत मानक प्रभु शरणागति राखन को समरथ ज्यों बुलावे त्यों बोले स्वामी कुदरत कवन हमारी साध संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत अमृत वेला सच नई विचार कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख दो तो दे आगे अरदास हमारी

से गुण मुझे ना आवनी, कै जी दोस धरे हे जिन्नी, सखी सहरावया तिन पूछोगी जाए पाए, लगो बेनती करो लेओगी पंथ बताए हुकम।

ਸੋ ਮਿਲ ਰਹਿਆ ਮਿਲਿਆ ਕਹੀਐ ਰੇ ਸੋਈ ਜੇ ਬਹੁ ਤੇਰਾ ਲੋਚੀਐ ਬਾਤੀ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਈ ਧਾਤ ਮਿਲੈ ਫੁਨ ਧਾਤ ਕੋ ਲਿਵ ਲਿਵੈ ਕਹੋ ਧਾਵੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਾਣੀਐ ਤਉ ਅਨੁਭਉ ਪਾਵੈ ਪਾਨਾ ਵਾੜੀ ਹੋਏ ਘਰ ਖਰ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਰਸੀਆ ਹੋਵੇ ਮੁਸਕ ਕਾ ਤਬ ਫੂਲ ਪਛਾਣੈ ਆਪਿਓ ਪੀਵੈ ਜੋ ਨਾਨਕਾ ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਮ ਸਮਾਵੈ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਅਮਰਾ ਪਦ ਪਾਵੈ ਤਿਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਕੀਆ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਣਾਈਆਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈਆਂ आए मिल गुर थे खाए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे रहाओ हर के गुण हर भाम दे से गुरु ते पाए जिन गुर का पाना मन्या तिन घुम घुम जाए जिन सतगुर प्यारा देखिया तिन को हो बारी जिन गुर की कीती चाकरी तिन सत बलिहारी हर हर तेरा नाम है दुख काटन हारा गुर सेवा ते पाई है गुरमुख निस्तारा जो हर नाम त्याय दे ते जन परवाना तिन विट हो नानक वारिया सदा सदा कुर्बाना साहर तेरी उस्त है जो हर प्रभ पावे जो गुरमुख प्यारा सेव दे तिन हर फल पावे जिन्ना हर सेती पिरहड़ी तिन्ना जीव प्रभ नाले ओए जप जप प्यारा जीव दे हर नाम समाले जिन गुरमुख प्यारा सेविया तिन को घुम जाया ओए आप छुटे परवार स्यो सब जग से छड़ाया गुरु प्यारे हर सेविया तार गुर प्यारे हर सेविया गुर धन गुर धनो गुर हर मार्ग दस्या गुर पुन वड पुनो जो गुर सिख गुर सेव दे से पुन वपराणी जन नानक तिन को वारिया सदा सदा कुर्बानी गुरमुख सखी सहेलिया से आप हर पाइया हर दर घ पहनाइया हर आप गल लाइया जो गुरमुख नाम त्याय दे तिन दर्शन दीजै हम तिन के चरण पखाल दे धूड़ कोल कोल पीजै पान सुपारी खातिया मुख बीड़िया लाइया हर हर कदे ना चेत्यो जम पकड़ चलाइया जिन हर नामा हर चेत्या हिरदय उर तारे तिन जम नेड़ ना आवई गुर सिख गुर प्यारे हर का नाम निधान है कोई गुरमुख जाने नानक जिन सतगुर भेटिया रंग रलिया माने सतगुर दाता आखिए तुस करे पसाओ हो गुर विट हो सद वारिया जिन दितड़ा नाओ सो धन गुरु सा बास है हर दे स्नेहा हो वेख वेख गुरु विकसिया गुर सत गुर देहा गुर रसना अमृत बोल दी हर नाम सुहावी जिन सुन सिखा गुर मन्या तिन्ना भुख सब जावी हर का मार्ग आखिए कहो कित बिद जाइए हर हर तेरा नाम है हर खर्च ले जाइए जिन गुरमुख हर आराध्या से सह वडदाने हो सतगुर को सद वारिया गुर बचन समाने तू ठाकुर तू साहिबो तू है मेरा मीरा तुद भावै तेरी बंदगी तू गुणी गहीरा आपे हर एक रंग है आपे बहुरंगी जो तिस भावै नानका साई गल चंगी तिलंग महला नौवां काफी इकवंकार सतगुर प्रसाद चेतना है तो चेत लै निस्दिन मैं प्राणी छिन छिन औद बिहाद है फूटे फूटे घट जियो पानी रहाओ हर गुण काहे ना गाभी मूरख ज्ञाना झूठे लालच लाग के नह मरन पछाना अजू कछ बिगड़ो नहीं जो प्रभ गुण गावे कहो नानक तेह भजन ते निरपै पद पावे तिलंग महला नौवां जाग लिहो रे मना जाग लिहो कहा गा फल सोया जो तन उपजिया संग ही सो भी संग ना होया रहाओ मात पिता सुत बंद जन हित जा स्यो की ना जो जियो छूट्यो जब देते डार अगन में दीना जीवत लो व्योहार है जग को तुम जानो नानक हर गुण गाय ले सब सुफन सुफन समानो।

रहाओ। संपत रथ धन राज स्यो अत नेहो लगायो। काल फास जब गल परी सब भयो परायो। जान बूझ कै बावरे तै काज बिगारियो। पाप करत सुकच्यो नहीं नह गर्भ निवारियो। जेह बिद गुर उदेसिया सो धन रे पाई। नानक कहत पुकार कै गहो सप्रभ सरणाई। तिलंग बाणी भगतां की कबीर जी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद बेरख देव इस तरह भाई। दिल का फिकर ना जाए तुक दम करारी जो कर हो। हाजिर हजूर खुदाए बंदे खोज दिल हर रोज। ना फिर परेशानी माहे एह जू दुनिया सेहर मेला। दस्तगीरी ना हे रहाओ द्रोग पढ़ पढ़ खुशी होए। बेखबर बाद बकाहे हक सच खल खालक खलक म्याने। श्याम मूरत नाहे आसमान म्याने। लहंग दरिया गुसल करदन बूद कर। फकर दायम लाए चश्मे जह तह मौजूद। अल्लाह पाक पाक है सक करो जे दूसर होए। कबीर कर्म करीम का ओह करै जाने सोए। नाम देव जी मैं अंदुले की टेक। तेरा नाम खुंदकारा मैं गरीब मैं मस्कीन। तेरा नाम है अधारा रहाओ करीमा रहीमा। अल्लाह तू गनी हाजरा हजूर दर पे तू मनी। दरियाओ तू दिहांद तू बिसियार तू तनी। देहे लेहे एक तू दिगर को नहीं। तू दाना तू बीना मैं बीचार क्या करी। नामे चे स्वामी बख्सांद तू हरी। हले यारा खुश खबरी। बल बल जाऊं हो बल बल जाऊं। निकी तेरी बिगारी आले तेरा नाओ रहाओ। कुजा आमद कुजा रफ्ती कुजा में रवि। द्वारका नगरी रास भुगोई। खूब तेरी पगरी मीठे तेरे बोल। द्वारका नगरी काहे के मगोल। चंदी हजार आलम एक कलखाना। हम चिन्नी पात सहा सांवले बरना। अस्पत गजपत नर है नरेंद्र। नामे के स्वामी मीर मुकंद। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भौ निर्वैर। अकाल मूरत जूनी से भंगुर प्रसाद। राग तू ही महला पहला चौक दे कर पहला। पांडा तोय बैस धूप देवो तो दूध है को जाभो। दूध करम पुन सुरत समायण होए निराश जमावो। जपो ताए को नामा अवर निराफल कामा रहाओ।

ना सरवर ना उछले ऐसा पंथ सुहेला, तेरा एको नाम मजीठड़ा, रत्ता मेरा चोला सद रंग टोला, रहाओ साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई, जे गुण होवन गंठड़िया, जे गुण होवे गंठ

गुरबचनी फल पाया सह के अमृत बोला। नानक कह सहेलियो सह खरा प्यारा हम सह केरिया दासिया साचा खजम हमारा सुही महला पहला जिनको पांडे पाओ तिना।

जिन को लिखिया अमृत हर का नाव दे वह दिखिया। चाले सतगुर पाए पवै न पीखिया जाको महल हजूर दूजे दूजे निवै किस दर दरवाणी नाहे मूले पुछ तिस।

ना देश दिसंतर भवी है जोग ना तीरथ नाई है। अंजन माहे निरंजन रही है जो जगत इव पाई है। सतगुर भेट ता सहसा टूटे तावत बरज रहाई है। निझर चरे सहज धुन लागे घर ही परचा पाई है। अंजन माहे निरंजन रही है जो जुगत इव पाई है। नानक जीव ते अमर रही है ऐसा जोग कमाई है। बाजे बाजो सिंझी बाजे तो निरपौ पद पाई है। अंजन माहे निरंजन रही है जो जुगत तो पाई है। सूही महला पहला कौन तराजी कवन तुला तेरा कवन सराफ बुलावा। कौन गुरु कै पै दीख्या लेवा कै पह मुल करावा। मेरे लाल जियो तेरा अंत ना जाना तू जल थल महियल भरपुर लीना तू आपे सर्ब समाना। रहो मान ताराजी चित तुला तेरी सेव सराफ कमावा। काठी पीतर सो सो तोली इन बिद चित रहावा। आपे कंडा तोल तराजी आपे तोलन हारा। आपे देखे आपे बूझे आपे है वन जारा।

चौथा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन राम नाम आराध्या गुर शब्द गुरु गुर के सब इच्छा मन तन पूरिया सब चुका डर जम के मेरे मन गुण गावो राम नाम हर के गुर तुठे मन पर बोध्या हर पिया रस गट के रहाओ सत संगत उत्तम सतगुर की सत संगत उत्तम सतगुर केरी गुण गावे हर प्रभ के हर कृपा धार मेलो सत संगत हम तो वह पग जान के राम नाम सब है राम नामा रस गुरमत रस रस के हर अमृत हर जल पाया सब लाखी तिस तिस के हमरी जात पात गुर सतगुर हम बेचो सिर गुर के जान नानक नाम परयो गुर चेला गुर राखो लाज जान के सूही महला चौथा हर हर नाम पजियो पुरखोत्तम सब बिनसे दाल दलघा पौ जन्म मरना मेट्यो गुर सब दी हर अस्थिर सेव सुख समझा मेरे मन पज राम नाम अत पिरघा मैं मन तन अर्प तरयो गुरे आगे।

नरपत राजे रंग रस माणे बिन नावे पकड़ खड़े सभे कलघा। धर्म राय सिर डंड लगाना फिर पछताने हाथ फलगा। हर राख राख जन किरम तुम्हारे शरणागत पुरख प्रत पलघा। दर्शन संत दिहो सुख पावे प्रभ लोच पूर जन तुमघा। तुम समरथ पुरख वड्डे प्रभ स्वामी मोको कीजे दान हर निमघा। जन नानक नाम मिले सुख पावे हम नाम विटो सद कुमघा। सूही महला चौथा हर नामा हर रंग है हर रंग मजीठ है रंग गुर तुठ है हर रंग। चाड़िया फिर बहुड़ न होवी भंग मेरे मन हर राम नाम कर रंग। गुर तुठ है हर उपदेश्या हर भेटिया राव निसंग। रहा मुंद ई आनी मन मुखी फिर आवन जाना अंग। हर प्रभ चेतना आयो मन दूजा पाओ सहलंग। हम मैल परे दो चारिया हर राखो अंगी अंग। गुरु अमृत सर नवलाया सब लाथे किलविख पांज पंग। हर दीना दीन दयाल प्रभ सतसंगत मेलो संघ। मिल संगत हर रंग पाया जन नानक मन तन रंग। सूही महला चौथा हर हर करे नित कपट कमावे हिरदा सुध न होई। आन दिन कर्म करे बहु तेरे सुपने सुख न होई। ज्ञानी गुरबिन भक्त न होई कोरे रंग कदे ना चढ़े जे लोचे सब कोई। रहाओ जप तप संजम वर्त करे पूजा मन मुख रोग ना जाई। अंतर रोग महा अभिमाना दूजे पाए खुआई। बाहर पेख बहुत चतुराई मनुआ दह दिस्तावे। हौमै व्याप्या शब्द ना चीने फिर जूनी आवे। नानक नदर करे सो बूझे जो जन नाम ते आए। गुर प्रसादीए को बूझे एक माहे समाए। सूही महला चौथा कर दूजा एक पंकार सतगुर प्रसाद। गुरमत नगरी खोज खोजाई हर हर नाम पदारथ पाई। मेरे मन हर हर सांत बसाई तिसना अगन बुझी खिन अंतर गुर मिली है सब भुख गवाई।

सत्संगत मिल हर रस पाई, तुर मस्तक लेख लिखे हर पाई, गुरु नानक तुठा मिले हर पाई, सुही महला चौथा हर कृपा करे मन।

वह रस रही अघाय गुरमुख पीवे सहज समाये हर रस जन चाख है जे भाई तौ कत अनत साध लो भाई रहा गुरमत रस राखो और धार हर रस राते रंग मुरार मनमुख हर रस चाख्या ना जाए होमे करे बहुती मिले सजाए नदर करे ता हर रस पावे नानक हर रस हर गुण गावे सुही महला चौथा घर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद नीच जात हर जपत्या उत्तम पदवी पाए पूछो बिदर दासी सुते किसन उतरिया घर जिस जाए हर की अकथ कथा सुन हो जन भाई जित सहसा दुख सुख तब लह जाए रहाओ रविदास चमार उस्तत करे हर कीरत निम्ख एक गाय पतित जात उत्तम पयाचार वर्ण छोड़े हर नाम देओ लिया मुख लाए जितने चार वर्ण पहल पग आए नाम दे प्रीत लगी हर सेती लोग छीपा कह बुलाए खत्री ब्राह्मण पेठ दे छोड़े हर नाम दे ओ लिया मुख लाए जितने भक्त हर सेवका मुख अड़सठ तीरथ तिन तिलक कढ़ाए जान नानक तिन को अंदिन परसे जे कृपा करे हर राय सूही महला चौथा तिनी अंतर हर आराध्या जिनको तुर लिखिया लिखत लिलारा तिन की बखीली कोई क्या करे जिनका अंग करे मेरा हर करतारा हर हर त्याए मन मेरे मन त्याए हर जन्म जन्म के सब दुख निवारण हर रहाओ तुर भगत जना को बख्शिया हर अमृत भगत भंडारा मूर्ख हो वैसो उनकी रीस करे तिस हलत पलत मोहकारा से भगत से सेवका जिन्ना हर नाम प्यारा तिन की सेवा ते हर पाइए सिर निंदक कै पवै छारा जिस घर विरती सोई जाने जगत गुरु नानक पूछ करो बिचारा चहो पीढ़ी आद जुगाद बखीली केने न पायो हर सेवक हर जिन चहो पीढ़ी आद जुगाद बखीली केने ना पायो हर सेवक पाए निस्तारा सूही महला चौथा जिथे हर आराधिय तिथे हर मित सहाय गुर कृपा ते हर मन वसै होर ते बिद लया ना जाई हर धन संचिय भाई जे हालत पलत हर होए सखाई रहाओ सत संगति संग हर धन खटिय होर थे होर तू पाए हर धन कितै ना पाई हर रत्न का व्यापारी है हर रत्न का व्यापारिया हर रत्न धन विहाजे कच्चे के व्यापारिये वाक हर धन लया ना जाई हर धन रतन जवे हर मानक हर धन नाल अमृत वेले वतै हर भगती हर ले वलाई हर धन अमृत वेले वतै का बीजिया भगत खाए खर्च रहे निखुटै नाही हलत पलत हर धन की भगता को मिली वड्याई हर धन निरभौ सदा सदा अस्थिर है साचा एहो हर धन अग्नि तस्करै पानिय जमदूतै किसै का गवाया ना जाई हर धन को उचका नेड़ ना आवई जम जागाती दंड ना लगाई साखती पाप करके विख्या धन संचया तिना एक विख नाल ना जाई हलतै विच साकत दुहेले पए हथो छुड़क गया अग्गे पलत साकत हर दरगह धोई ना पाई इस हर धन का साहो हर आप है संतो जिसनो दे सो हर धन लद चलाई इस हर धन का तोटा कदे ना आवई जन नानक को गुर सो जी पाई सूही महला चौथा जिसनो हर सुप्रसन्न होए सो हर गुण जिसनो हर सुप्रसन्न होए सो हर गुणा रवै सो भगत सो परवान तिसकी महिमा क्या।

0: सतगुरु सो सतगुरु सा सेवा सतगुरु की सफल है जितते पाइए परम निधान जो दूजे पाए साकत कामना अर्ध दुर्गंध सरेव दे सो नेफल सब अज्ञान जिसनो प्रतीत होवे तिसका गाव्या थाए पवे सो पावे दरघे मान जो बिन प्रतीति कपटी कूड़ी कूड़ी अच्छी मीट दे उनका उतर जाएगा झूठ गुमान जेता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जामी पुरख भगवान दासन दास कह जन नानक जेहा तू कराहे तेहा हौ करी बखियान सुही महला चौथा घर सतवा इकवंकार सतगुर प्रसाद तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी निधाना तुमरी महिमा बरना साको तू ठाकुर रूच भगवाना मैं हर हर नाम धर सोई ज्यो पावे त्यो राख मेरे साहिब मैं तुझ बिन अवर ना कोई रहाऊ मैं तान दी बाण तू है मेरे स्वामी मैं तोदे आगे अरदास मैं होर थाओ नाही जिस पह करो बेनंती मेरा दुख सुख तुझ ही पास विचे धरती विचे पानी विच कासट अगन तरीजे बकरी सिंह इकत थाए राखे मन हर जप भ्रम पौ दूर करी जय हर की वडियाई देखो संतो हर निमाणिया मान देवाए जो धरती चरण तले ते ऊपर आवे त्यो नानक साध जना जगत आन सब पैरी पाए सूही महला चौथा
1: तू ही महला चौथा तू करता सब कुछ आपे जाने क्या तुझ पे आख सुनाए तुद जाने क्या तुद आख सुनाइए बुरा भला तुझ सब कुछ तुझे जेहा को करे तेहा को पाइए मेरे साहेब तू अंतर की वेद जाने बुरा भला तुझ सब कुछ तुझे तुझे तुद पावे तुझे बुलावे रहाओ सब मोह माया शरीर हर किया विच देही मानुख भगत कराई इक ना सतगुर मेल सुख देवे एक मनमुख तंद मिटा पटाई सब को तेरा तू सबना का मेरे करते तुद समना सिर लिखिया लेख जेही तू नदर रह करें तेहा को वे मैं नदरी नाही को देख तेरी वड्याई तू है जाने सब तुझनो नित त्याए जिसनो दुध पावे तिसनो तू मिले जन नानक सो थाई पाए सोई महला चौथा जन के अंतर वस्या मेरा हर हर तन के सर रोग गवाए ते मुगत पे जन हर नाम त्याया

घर मकस जी पाई हमें रोग सर जगत दिया प्या तिनको जन्म दुख मरण दुख पारी घर प्रसादी को वेला छूटे पिस दिन को बलहारी जिन शिस्त साजी सुई हर जाने ताका रूप पारो नानक आपे देख हर दिल से गुरमुख ब्रह्म विचारो सोई महला चौथा कीता करना सर्व रजाई किस हरियाई कीता करना सर्व रजाई किस कीचे ये कर सकिए अपना कीता किस न होवे ज्यों हर पावे त्यों रखिए मेरे हर जियो सबको तेरे बस संजूर नहीं जे किस नहीं

जाना दूर, बिनो करींजे जाना दूर, पर अविनाशी रह परपूत भरपूर जन नानक गावे देख दूर। सुही महला पंजमा गै

शीतल को लोड़ी कमल कहा गुण कंत प्यारे सुगुण स्वरूप दयाल मरारे रहाओ सात श्री सात श्रृंगार को अंजन पाया बसना संबोल मुख खाया कंगन बस्तर गहने बने सुहागे तन सब सुख पावे जातर कर आवे गुण कामन कर कांतरी जाया बस कर ली नांगर परम चकाया सते ऊंचा मंदिर मेरा सब कामन त्यागी प्रभ प्रीत मेरा प्रगटिया सूजोत जियारा सेज विछाई शब्द पारा शब्द

तुझ कर मानो राव ये कासे गृति तन गंता तन सूती पर साज जगंता पियो मंदर तन मतवंता तन जागे जे पेर भूलता बोलंता पही नरासी बहुत दिन लागे दे सुख संतर मैं सगल जागे ठन रैन ना पावो बिन पग पारे हुए कृपाल पर मिले सुभागे पयो कृपाल सत्संगत मिलाया बूझी तब त करे कर पाया सगल सिंगार हुन मुझे सुहाया कहो नानक गुर परम चकाया।

हर हर ध्याया सा संग तिन्नी दर्शन पाया राहो बादशाह सब पारी मरना जो दिसे सो काले करना कूड़े मोए लपट लपटाना छोड़ चलिया ता फिर पिस्ताना कृपा दान नानक कहो कर दात नाम तेरी जब न रात सुई महला पंजमा कड़कने अंतर तुम्हें बसारे सगल समगरी सूत तुम्हारे तू प्रीतम तू प्राण हदारे तुम्हें पेघ पेघ मन दिखसारे राहो अनक जोन परम परम परम धारे उठ गई अब साध सिंगारे अगम गोचर लख पा अपारे नानक सिमरे दैन अरि नारे सुही महला पंजमा कवन काज माया वड़े आई जाक मिनस बार नकाई ये सुपना सोबत नहीं।

दूसर हुआ ना को होई, जप नानक प्रभ एको सोई, सोई महला पंजवा, सिमर सिमर सिमता को हाँ जीमा, चरण कमल तेरे तोय तोय पीमा, सुहर मेरा अंतर जामी, भक्त जना कै संग सुमामी, राहु सुन सुन बतनाम ते आमा, अठ पै तेरे गुण गावा, पेख पेख लीला मन आनंदा, गुण पार प्रो परमानंदा, जाके सिमर कृष्ण पौना व्यापे, सदा सदा नानक हर जापे, सुई महला पंजमा, गुर के बचन विदे ध्यान तारी, इर्षना जाप जप मनवारी, सफल मूर्त दर्शन बलहारी, चरण कमल मन प्राण हदारी, रहाउ साध संग जन मरण वारी, अमृत कथा सुन करन हदारी, काम क्रोध लोभ मोह तजारी, दृढ़ नाम दान स्नान सुचारी, कौ नानक तत बिचारी, राम नाम जप पार उतारी, सुई महला पंजमा, लोभ मोए मगन।

जाने गड़कने अंतर पार ब्रह्म पहचाने जो कुछ करे सोई फल माने आद अंत की कीमत जाने कौन नानक किसी।

आठ पैर हर हर जस गाइए, सिमरो सिमरो सुपर बपना ना, सपना स्वामी सर कटांका अंतर जामी रहाओ, चरण कमल स्यों लागी प्रीत, साची पूर्ण निर्मल रीत, संत प्रसाद वसे मन माही, जन्म जन्म के कल बख जाए, कर कृपा प्रभु दीन दयाला, नानक मंगे प्रसंतर वाला, सुई महला पंजवा, दर्शन देख जिया गल तेरा, पूर्ण कर्म हुए पर मेरा, ए बेनती सुन पर मेरे देना देना।

का दुख दंसे पूर्ण पई काल पेक पेक जीवा दर्श मारा चरण कमल जाई बलहारा तुझने ठाकर कमन हमारा राहु सासंग प्रीत मन आई पूर्व कर्म लिख तर पाई जप हर हर नाम।

हरी तुम कृपा ते साथ ते संग पाई अंतर की गत दे पैसारी तुझे बड़ हवन कोई जिस नू लाए ले सो लागे भगत सहारा सोई देकर जोड़ मांगो एक जाना साहब तुठे पावा साथ साथ नानक करा दे आठ पैर गुण गावा सोई महला पंजमा जिसके तू स्वरूप तू स्वामी सोध कैसा पावे बोल न जाने माया मधमाता मरना चीत न आवे मेरे राम राय तू संतां का संत तेरे तेरे सेवकों पो पिछ नाही जम नाही आवे मेरे राहु जो तेरे रंग राते स्वामी तिनका जन्म मरण दुख नासा तेरी बख्श न मेटे कोई सतगुर का दिलासा नाम त्यायन सुख फल पायन आठ पैर राधे तेरी शरण तेरे परवासे पंच दू दुष्ट लै सा दे ज्ञान त्याल किस चरम न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जनकल राखी मेरी सोई महला पंजमा सब त्या गुरशाली आया राखो राखन हारे जैतू लावे तत हम लागे क्या ए जंत विचारे मेरे राम जी तू परम अंतर जामी कर कृपा गुरदेव दयाला गुण गावन नित स्वामी रहाउ आठ पैर पर अपना त्याये गुर प्रसाद पो तरिए आप त्याग हुई सबरे ना जीव त्यायो मरिए सबल जन्म तिस्क जग तीचर सा संग नाम जाते सगल मरो तिसके पूर्ण जिस दया करे पर व्यापे दीन दयाल कृपाल प्रसन्नी तेरी शरण दयाला कर कृपा अपने नाम दीजे नानक सादर वाला सु राग सुई अष्टपदियां महला पहला घर पहला इकूंगा सतगुर प्रसाद सब आगन में सब आग अवगन में गुण नाही कोई क्यों कर संत मिलावा होई ना मैं रूप न बंके ने ना

पे है पीहूसी। जय पारे प्यारा तेरा देसी सुई महला पहला का नाम है का सतगुर प्रसाद। कच्चा रंग संद का छोड़िया दिन चार वे परम पुलिया ठग।

तराई अनेक पाप करी उंगर कारण उंगर पावे सो थाई पाई रैन दिनस गुरु चरणारा दे दया करू मेरे साई नानका जियो पेंड गुरु है गर मिल तरत काई नानका प्रभु पूर रहो जत कत तत गुसाई राग सुई महला चौथा अष्टपदिया कर दसमाई खूंका सतगुर प्रसाद अंदर सच्चा ने लाया प्रीतम अपने तन मन होए दयाल जो कर देखा सामने मैं हर हर नाम साऊ भरपूरे ते पाया अमृत मथा है राव हो सत

ये पूर्व होवे लिखिया ता अमृत सहज पियो, सत्यां गुर चलाये अड़द्या पी गुर अलाओ। कोई ऐसा गुरमुख जे मिले तो ताके तुम पाओ, कोई ऐसा सिज्जन लोड लह मैं प्रीतम दे मलाए। सतगर मिलिया हर पाया मिलिया से सवाए, सतगर सागर गुण का नाम का मैं तुस देखन का चाओ। हाँ तुस बिन करी न जीव्यो बिन देखे मर जाओ, जो मछली बिन पाए रे न किसे उपाए। क्यों हर मन संत न जीवी बिन हर नामे मर जाए, मैं सत

आय कहाँ तुम की ना राम को नाम न कहूँ लीना राम न जपो कवन मात लागे मर जाएगी क्या क्यों क्या करो अपागे रहो दुख सुख करके कुटुंब जवाया मरती वार के सार दुख पाया कंठ गान सब कर्ण पकारा कह कबीर आगे ते ना सुमारा श्री कबीर जी सर हर कंपे बाला जियो ना जानियो क्या करती दियो रहन गई मत दिन भी जाए पवर गए बग बैठे आए राव काचे चरवे रह न पानी हंस चलिया काया कमलानी पार कन्या जैसे कर सिंगारा क्यों रिलिया मन बाज बतारा काग दावत पूजा पुरानी कह कबीर एक सास रानी सुई कबीर जी ओ अमल सिरानो लेखा देना आए कठन दूर जम लेना क्या तय कटिया कहाँ गवाया चलो सिताब दीवान बुलाया चल दरहाल दीवान बुलाया हर फरमान दरगाह का आया रहाओ करो दास गाव की सबाकी लियो नवेराज की राती किशों भी खर्च तुम्हारा सारों सुबह नवाज सुराए गुजारो सास संग जाको हर रंग लागा तान तान सो जन पुरख सुभागा ईट ऊट जन सदा सेले जन पदार्थ जीत अमोले जागत सोया जन्म गवाया माल तन जोरया प्या पराया कौ कबीर तेरी नर भूले खसम सार माटी संग रूले सुख कबीर जियो ललत ठाके नैन स्वर्ण सुन बाके थाकी सुंदर काया जरा हाग दी सब मत थाकी एक न साख समाया बावरे तय ज्ञान विचार न पाया बिरथा जन्म गवाया रहो तब लग प्राणी किसे सिरे वे जब लग कट में सासा जे काटे जाए ता भौ न जासी हर के चर निवासा जिसको शब्द बसावे अंतर चुके किसे प्यासा हुक्मे बुझे चौपड़ खेले मन जन ठाले पासा जो जन जान भजो अभगत को तिनका कछु नासा कह कबीर के जन कबो न हारे ताल सो ताल जो जाने पासा सुई ललित कबीर जियो एक कोट पंच सदारा पंचे मांगे हाला जिमी नाई मैं किसी की बोई ऐसा दें दुखाला हर के लोगा मोको नीच दसे पटवारी पूज पूजा कर में गुर पे पुकारिया तिन हो लिया वारी राव नौ डाडी दस मुसुफ तावे रईत बस न देही डोरी पूरी मापे नाही बो उसका लो लही बैतर कर एक पुरख समाया उन दिया नाम लिखाई धर्म राय का दफ्तर सोडिया बाकी रिजम

सखी सहेली राम रंग राती मंतनी चुप जाए। नानक चर्ज चर्ज चो मिलिया कहना कभी न जाए। राग बिलावल मना पंचमकर चौथा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। एक रूप सतगुरु प्रसारा आपे बन जा प्यारा। ऐसे ज्ञान बरो बिरलोई पाए जत जत जाइए तत् दृष्टाए। राहो अनंत रंग निर्गुण एक रंगा आपे जल आपे एक रंगा। आप ही मंदिर आपे सेवा आप ही पुजारी आप ही देवा आपे जोग आप ही जोगता। नानक के प्रसादी मुक्ता बिलावल महला पंजमा। आप पावन आप सुधरना आप करावन दोष न लेना। आपन बचन आप ही करना आपन बैठो आप ही जरना। रहो आप ही मस्त आप ही बोलना आप ही चलना जाई चलना। आप ही गुप्त आप अर्गटना आप ही कटकर आप लिपना आपे अवगत आप संग रचना को नानक प्रभ के सब जचना। बिलावल महला पंजमा। पूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा वो बुढ़पा जी पाया। सिमर मना राम नाम चितारे बस रहे हृदय गुरु चरण प्यारे। रहो काम क्रोध लोभ मोह मन लीना बंधन काट मुक्त कर तीना। दुख सुख कत जन्म फरमुआ तन कमल गुर आश्रम दिया। अगन सागर बुट संसारा नानक मां पकर सतगुर ने सितारा। बिलावल महल पंजमा। तन मन तन अर्पो सब अपना कवन सब मत जित हर हर जपना। कर आसा आयो प्रभु मांगन तुम बेग दो शोभा मेरे आंगन। रहो नेकत जुत कर बहुत विचारो साथ संग इस मनो धारो। मत बुद्ध सुरत नाही चितराई ता मिलिए जान ले मिलाई। नैन संतोख प्रभु दर्शन पाया कौन अंग सुन सो आया। बिलावल मला पंजमा। मात पिता सुत साथ न माया साथ संग सब दुष्ट मिटाया। रव रया प्रभु सब में आपे हर जप रखना दुख न व्यापे। रहो तिखा पूख बहुत व्याप्या शीतल पे हर हर जास जाप्या। कोट जगन संतोख न पाया मन से तृपता नान गुण गाया। देव भगत प्रभु अंतरयामी नानकी बिरंती स्वामी। बिलावल माला पंजमा। गुरपुरा वडभागी पाइये मिल साधु हर नाम ध्याइये। पार ब्रह्म प्रभु तेरी सरना के लोक काटे पज गुर के चरना। रहो अवर कर्म सब लोकाचार मिल साधु संग होएदार। सिमर सास वेद विचारे जपिए नाम जित पार उतारे। जन नानको प्रभु कृपा करिए साधु चुरु मिले मिस करिए। बिलावल मल पंजमा। गुर का शब्द हृदय में चीना सगल मनोरथ पूर्ण चीना। संत ना का मुख उजला सीना कर कृपा अपना नाम दीना। रहो अंध कुपते कर गहलीना जय जय कर जगत परिटीना। नीचा ते ऊच ऊन परिना अमृत नाम रसलीना। मन तन निर्मल पाप जल खीना को नानक प्रभु पय परसीना। बिलावल महला पंजमा। सगल मनोरथ पाइए मीता चन कमी चो लाए चीता। हाँ बलिहारी जो प्रभु त्यावत जलन बुझे हर हर गुण गावत। रहो सफल जमन होते बुद्ध पागी सा संग रामी लिव लागी। मत पत तन सुख सहज आनंदा एक नमथना विसरो परमानंदा। हर दर्शन की मन प्यास कनेरी पंत नानक सन प्रभु तेरी। बिलावल मन पंजना मोय निर्गुण सब गुण महिना दया तर अपना कर लीना। मेरा मन तन हर गोपाल सुहाया कर कृपा प्रभु कर में आया। रहा भगत वसुदय काटन हारे संसार सागर अब उतरे पारे तत् पावन प्रभु वेद वीर लिखिया। पार ब्रह्म सो नैनो पेखिया साध संग परते नारायण नानक दास सब दूर पलायन। बिलावल मल पंजमा। कवन जाने प्रभु तुम हरी सेवा प्रभु नासी लखो पेवा। गुण बेअंत प्रभु घर गमीरे ऊच महल स्वामी प्रभु मेरे। तुम परम्पर ठाकुर मेरे राहो एक सुबे नानको दूजा। तुम ही जानो अपनी पूजा आपो कुछ ना हो तपाई। जिस प्रभु देवे सो नाम पाई कौ नानक जो जन प्रभु पाया। गुण दान प्रभु तिन ही पाया। बिलावल मन पंजवा। मात गर्मे हाथ दे राख्या हर छोट विख्या फल चाख्या। पज गोबिंद सब छोट जंजाल जब जम आए सिंगारे मूड़े तब तिन तब तन बिन्त जाए बेहाल। रहो तन मन तन अपना कर थापिया।

करते दम आड़ी लोते गणित नीता कवन बढ़ाई कैसा तू बेअंत गणिता कर कृपा मोह नाम दे नानक दर सरिता बड़ा बल महला पांचवा।

प्रणापते पिता प्रीत पाल, गुण गावो मेरे साध संग नानक सुख नाल। बराबर महला पंजला। कीता लोड़े सो करे तुझ बिन कछ नाहीं, प्रताप तुम्हारा देख के जमदूत छड़ जाए। तुमरी कृपा ते छुटिए बिन से अमेम, सर्व कला सवर्थ प्रभ पूरे गुरदेव रहाओ। खोजत खोजत खोजिया नामे बिन गुरपुर, जीवन सुख सब साध संग प्रभ मनसापुर। जित जित लावो तितर तित लगे स्याणप सब जाली, जत कत तुम भरपूर होए मेरे दीन दयाली। सब कुछ तुम ते मांगना बड़भागी पाए, नानक की अरदास प्रभ जीवा गुण गाए। बराबर महला पांजवा। साध संगत कै बास वे कलमल सब रसना, कलम मल सब नसना, प्रभ खेती रंग रातिया तां ते गर्भ न ग्रसना। नाम कहत गोविंद का सूची पई रसना, मन तन निर्मल होई है गुर का जप जपना रहाओ। हर रस चाख तरप्या मन रस लै हसना, बुद्ध प्रगास प्रगट पई और टकम्बल बगसना। शीतल शांत संतोख होए सब बूझी कृष्णा, दैन सतावत मिट गए मिट गए साध रसना। गए निर्मल सन बसना, राखण हारे राख्या पै परम पसना। नाम निदान नाम सुखी पेक साध दर्शना। बलवान महला पंजवा। पानी पखा पीस दास के तब होए नियाल, राज में लिख सिकदारियां अग्नि माहे जाल। संत जना का छोरा तिस चरनी लाग, माया तारी शतरपत तेन छोड़े त्याग। रहाओ संत नका दाना रुखा सो सर्व निदान, ग्रह साकत क्षति प्रकार ते विखु समान। पलत जना का लूंगरा उड नगन न होई, साकत सैर पौ रेशमी पहरत पत खोई। साकत स्यों मुख जोरै अद विचों।

झूठ समगरी बात मन वसी पार ब्राह्मण जाना परम ज्योत पूर्ण पुरख सब जी तुम्हारे जियो तू राखे त्यो रहा प्रभ अगम पारे कारण कारण समरथ पढ़ावे अपना नाओ नानक तरिये साध संग हर हर गुण गाओ मलावन महला पंजवा कवन कवन नहीं पतरिया तुमरी प्रतीत महामोहनी मोया नानक की नरक की रीत मन खट हर

जप तप संजम तुम खंडे जम के दुख डाड सिमर नहीं जोन दुख निर्लजे पाड़ हर संग सहाई महामीत तिस स्यों तेरा भेद जिंदा पंच बटवारिये उपजो महाभेत नानक तिन संतर शरणागति जिन मन बसिया की ना तन तन सरबंस अपना प्रभजन को दीना बुलाबल महला पांजमा उद्दम करता नंद पया सिमरत सुख सार जप जप नाम गोबिंद का पूरन विचार महला पांजमा उद्दम करता नंद पया सिमरत सुख सार जप जप नाम गोबिंद का पूरन विचार चरण कमल गौर के जप तहार

नरसी जन परे ताका सद प्रताप राखण हार अपार प्राव ताकी निमल सेव राम राज राम दास पर किन्नो गुर देव राओ सदा सदा हर त्याये कुछ विघ्न लागे नानक नाम सलाइए पाए दुश्मन पागे बलाबल महला पांचवा मन तन प्रभ राधिये मेर साधु समागे उच्चरत गुण गोपाल जस दूत जम भागे राम नाम जन जपे आन दिन सद जागे संत मंत ना जोई चित चाख न लागे रहाओ काम करो मद मान मो बिनते अनरागे आनंद मगन रस राम रंग नानक सरनागे बिलावल महला पांचवा जी जोगत बस प्रभु के जो कहे सो करना पै प्रसन्न गोपाल राय पौ कुछ नहीं करना दुख न लागे कदे तुद पार ब्रह्म तारे जम कांकर नेड़ ना आवे गुर सिख प्यारे रहाओ कारण कारण समरात है तिस दिन नहीं होर नानक प्रभ सगनागती साचा मन जोर राम महला पांचवा सिमर सिमर प्रभ अपना नाठा दुख ठाओ विश्राम पाए मिल साध संग ताते वर्ण ताओ बलिहारी गुर अपने चरणन वल जाओ आनंद सुख मंगल बने फेकत गुण गाओ रहाओ कथा कीर्तन ना राग नाद तन ए बनियो सुआओ नानक प्रभ सो प्रसन्न पै बाचत फल पाओ बलाबल महला पांचवा दास तेरे की बेनती रिद कर प्रगास तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म देखन को नाथ चरण कमल का आसरा प्रभ पुरख गुणतास कीर्तन नाम सिमरत रहो जब लग काट सास रहाओ मात पिता बंद बतू है तू सर्व निवास नानक प्रभ शरणागती जा को निर्मल सास ब्रह्मल महला पांचवा सर्व सिद्ध हर गाइये सर्व सिद्ध हर गाइये प्रभ सब भला मनावे साध साध मुख ते कहे सुन दास मिलावे सुख सहज कल्याण रस पूरे गुरकीन जी सगल की दयाल पै हर हर नाम चीन रहाओ पूर रेहो सर्वत्र में प्रभ गुणी गहीर नानक भगत आनंद है मैं पेख प्रभ की पीर बलाबल महला पांचवा अरदास सुनी दतार प्रभ होए कृपाल राख लिया अपना सेवको

आठ पहर गुण गावत, प्रभु के काम क्रोध ती इस कांते जात, त्रैपत गाये पेख प्रभु दर्शन अमृत हर रस भोजन खात, चरण सरण नायनक प्रभु तेरी कर कृपा सतसंग मिलात, बिलावल महला पंजवा राख लिए अपने जन आप, कर कृपा हर हर नाम दीनो बिंस जय सब सोग संताप, रहाओ गुण गोविंद गावो सब हर जन राग रतन रसना आलाप, कोट जन्म की तृष्णा निवारी राम रसैन आत्म त्राप, चरण गहे सारण सुखदाते गौर कह बचन जपे हर जाप, सागर तरे परम पै बिनसे कौ नानक ठाकर प्रताप, बिलावल महला पंजवा ताप लाहया गुर सिरजनहार, सतगुर अपने को बल जाई जिन पैज रखी सारे संसार, रहाओ कर्म सक तर बालक रख लीनो प्रभ अमृत नाम महारस दीनो, दास की लाज रखे मेहरबान गुर नानक बोले दरगाह परवान, राग बिलावल महला पंजवा चौक ते दो पते घर सतमा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद रहाओ सतगुर शब्द उजारो दीपा, बिन सियो अंधकार ए मंदिर रतन कोठड़ी खुली अनूपा, रहाओ बिस्मन बिस्म पए जो पेख्यो कहन न जाए बड़ियाई, मांगन पए उहां संग माते ओत पोत लपटा।

तेरिन के मंदर साज सवारियो पावक तले जिरावत हे। ऐसे गढ़ में ऐठ अठीलो फूल फूल क्या पावत हे। पांच दूत मूंड पर ठांडे केस गहे फिर आवत हे। दृष्ट आवे अंध ज्ञानी सोए रेहो मद मावत हे। जाल पसार जोक विस्तारी पांखे ज्यो फभावत हे। कौ नानक बंधन काटन कौ मैं सतगुरु पुरख त्यावत हे। बिलावल महला पंजवा हर हर नाम अपार मोली प्राण प्यारो मने अधारो चित चितावो जैसे पानत बोली रहाओ। सहज समायो गुरहे बतायो रंग रंगी मेरे तन की चोली। पैर मुख लागो जाओ बड़भागो सुहाग हमारो कतु न डोली। रूप न धूप न गंध न दीपा ओत पोत अंग अंग संग मौली। कौ नानक प्रवि सुहागन अंत निकी मेरी बनी खटोली। बिलावल महला पंजवा गोविंद गोविंद गोविंद मई जब ते पेटे साध दयारा तब ते दुरमत दूर पई रहाओ। पूरन पूरन हो सुपूरन शीतल शांत दयाल दई। काम क्रोध तृष्णा अहंकारा तन ते होए सगल खई। सत संतोख दया धर्म सत संतन ते अमत लई को नानक जिन मनो पछाणिया तिन सगली सोच पई। बिलावल महला पंजवा क्या हम जी जंत बेचारे वरन न साके एक रोमाई। ब्रह्म महेश सिद्ध मन इंद्रा बेअंतर ठाकर तेरी गत नहीं पाई। क्या कथिए कुछ कथन न जाई जय जय देखा तह रिहा समाई रहाओ। जय महा अभियान दुख जम सुनिए तै मेरे प्रभु तू ही सहाई। सारन परयो हर चरण कहे प्रभु गुर नानक को बूझ बुझाई। बिलावल महला पंजवा आगम रूप अवनाथी करता पतैत पवैत इक निमख न जपाइए। अचरज सुनियो प्राप्त भेट तुले संत सारन चरण चरण मन ढाइए। कित विधिये कित संजम पाइए कौ सुर जन कित चुगती त्याइए रहाओ। जो मनुख मनुख की सेवा ओ तिस की लई सुन जाइए। नानक सरन सरन सुख सागर मोह एक तेरो एक नाइए। बिलावल महला पंजवा संत सरन संत टहल करी तंद बंद और सगल जारो अवर काज ते छूट परी रहाओ। सुख सहज अर कनो आनंदा गौर ते पायो नाम हरी। ऐसो हर रस वरन साकू गौर पूरे मेरी उलट तरी। पेख्यो मोहन सब कै संगे ऊन न काहू सगल परी। पूरन पूर रिहो कृपा निध कौ नानक मेरी पूर परी। बिलावल महला पंजवा मन क्या कहता हों क्या कहता जान परवीन ठाकर प्रभ मेरे तिथि आगे क्या कहता रहाओ। अन बोले को तू ही पछानो जो जी अन में होता। रे मन काहे कहाँ लो डक को रे मन काहे कहाँ लो डकाए जाऊं पेकत ही संग सुनता। ऐसो जान पे मन आनंद आ

आंधे कूप में परियो प्राणी परम गुबार मोह बंद परे को नानक प्रभ हो दयारा गौर पेटे काडे बांफरे। बलावर महला पांचवा। मन तन रसना हर चीना पै आनंद मिटे अदेसे सर्व सुख मो कहूं गौर दीना रहाओ ज्ञान पते सब पई सियानप प्रभ मेरा दाना बिना हाथ देह राखे अपने को काहू न काटे कस कीना बल जाबू दर्शन साधु के जय प्रसाद हर नाम लीना को नानक ठाकर परोसे काहू न मान्यो मन सीना। मलामल महला पंजवा। गुर पूरे मेरी राख लई अमृत नाम हृदय में दीनो जन्म जन्म की मैल गई हाओ निवरे दूत।

सुनो लगे न तत्ती बाल दमोदर दयाल स्वामी सर्वंस संत जना तन माल नानक जाचक दास प्रभ मांगे संत जना की मिले रवाल मुलाबल महला पांचवा सिमरत नाम कोट जतन पए साध संग मिल हर गुण गाए जमदूत न कौ त्रास आहे रहाओ जेते पुनः चरण से कीने मन तन प्रभ के चरण गए आवन जान परम पौ नाठा जन्म जन्म के किल विख दहे निरपो होए पजोदक जिसे ए पदार्थ बड़ भाग लहे कर कृपा प्रभ पूर्ण दाते कर कृपा पूर्ण प्रभ दाते निर्मल जस नानक दास चाहे बराबर महला पंजवा सूली तिन रैन राख सूली कहत कही न पहुँचे सूली ही होए मुआ न काप रहाओ काट कुठार खसम सिर काटिया खिन में होए गया है खाक मंदा चितवद चितवद पचिया जिन रचिया तिन दीना ताक पुत्र मीत तन पशु न रेहो सो छोड़ गया सब पाई साक कौ नानक तिस प्रभ बरिहारी जिन जन का पीनो पूरन वाक बला बल महला पांचवा पूरे गुर की पूरी सेव आपे आप बाते स्वामी कारज रात किया गर देव रहावो आद मद प्रभ अंतर जामी अपना थाट बनायो आप अपने सेवकी आपे राखे प्रभ मेरे को बड़ प्रताप ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु बस कीन जिन सगले जंत चरण कमल नानक शरणागति राम नाम जप निर्मल मंत्र बराबर महला पांचवा ताप

पाप कारण है परिद्या। महाविकार कोर दुख सागर तिसने प्राणी गलत पिया। सान परे नानक स्वामी की बाह पकड़ प्रभ काढ लिया। बराबर महला पंजवा। अपना प्रभ आया चीत दुश्मन दुष्ट रहे

और शांत सुख और आनंद कनेरे प्रीतम नाम हृदय उरहार जियो पिंड धन रास प्रभ तेरी तू समरथ स्वामी मेरा दास अपने को रखनहारा नानक दास सदा है तेरा बराबर महला पंजवा गोविंद सिमर हुआ कल्याण मिटी उपाद पया सुख साचा अंतर जामी सिमरिया जान रहाओ जिसके जी तिन किए सुखाले भगत जना को साचा तान दास अपने की आपे राखी पै पंजन उपर करते मान पई मतराई मिट्टी बुराई दुष्ट दूसर काढ़े छाण सुख सहज आनंद कनेरे नानक जीवे हर गुणी बखान हर गुण बखान बराबर महला पंजवा पार ब्रह्म पय कृपाल कारज सगल सवारे सतगुर जप जप साधु पय निहाल रहाओ अंगीकार किया प्रभ आपने दोखी सगले पैर वाल कंठ लाए राखे जने अपने उधर लिए लाए अपने पाल सही सलामत मिलकर आए निंदक के मुख होए काल कौ नानक मेरा सतगुर पूरा गौरपुर साध प्रभ पय निहाल बराबर महला पंजवा मुँह लालन क्यों प्रीतम नहीं रहाओ तोरी ना छूटे चोरी ना छूटे ऐसी मदो खिच तनी दिन तो रैन मन माह बस है तू कर कृपा प्रावे अपनी बल बल जाऊं श्याम सुंदर को कथ कथा जा की बात सुनी जन नानक दासन दास कहियत है मुहे करो कृपा ठाक प्रावे अपनी बला बला महला पंजवा हर के चरण जप जाऊं कुरबान गौर मेरा पार ब्रह्म परमेश्वर ताका हृदय तर मन ध्यान रहाओ सिमर सिमर सिमर सुखदाता जाका पिया सगल जहान रखना रघु एक नैन साची दरगा पावे मान साध संग प्राप्त

जप जप नाम तमारो प्रीतम तन ते रोग कहे महामुग्ध अजान अज्ञानी राखे तार दए को नानक गुर पूरा पेतिया पेतियो आवन जान रहे। बराबर महला पंजवा जीव नाम सुनी ज्यों सो प्रसन्न पै गुर पूरे तब मेरी आस पुनी राहो पीर गई बादी मन तीरा मोहो आनंद तुनी उपजो चाओ मिलन प्रप्रीतम रह न जाए नी अनक भगत अनक जन तारे सिमरे अनक मुनि अंधले टेक नील तन तन पायो प्रभ नानक अनक गुनी। राग बराबर महला पंजवा घर तेरवा पड़ताल एक मुकार सतगुर प्रसाद मोहन नींद न आवे हावे हार कजर वस्त्र अभरण कीने उडीनी उडीनी उडूनी कब कर आवे री रहाओ सारन सुहागन चरण सीस धर लालन मोहे मिलावो कब कर आवो री सुनो सहेरी मिस बात कहो सागरो अहंग मटावो तो कर ही लालन पाहो तब रस मंगल गुण गावो आनंद रूप त्यावो नानक द्वारे आयो तो मैं लालन पाओ पायो री मोहन रूप दिखावे अब मोहे नींद सुहावे सब मेरी तिखा बुझानी अब मैं सहज समानी।

तुझको बलहारिया। रहाओ सिद्ध साधक जोगी, अर जंगम एक सिद्धि नीत आया। परसत पैर सिजत से स्वामी, अखर जन को आया। जप तब संयम कर्म न जाना, नाम जपी प्रभु तेरा।

बिचारी सुहर जन हर प्रभावे निष्पद करे नैराती लाज छोड़ी हर के गुण गाए रहा धन वाजे आनंद कोरा मन मान्या हर।

पाखंड वर्त्य है जनन दूर गर्मक बुझे सो जी होए अंतर नाम से सुख होए द्वापर दूजे द्विंदा द्विंदा होए परम पनाने जाने दुए द्वापर धर्म दुए पैर रखाए गर्मक होवे ता नाम दरडाए कल युग धर्म कलाए कह रहाए एक पैर चले माया मोहे वधाए माया मोहत गुबार सतगर पेटे नाम उदार सब जुग में सचाई को सोई समय सच दूजा नहीं कोई सची कीर्त सच सख होई गुरमुख नाम खाने कोई सब जग में नाम उत्तम होई गुरमुख वेला बुझे कोई हर नाम ते आए भक्त जन सोए नानक जुग जुग नाम वडाई होई राम कली महला चौथा कर पहला इकूंकार सतगुर प्रसाद जे वड भाग होए वड भागी ता हर नाम ते आवे नाम जपत नामे सुख पावे हर नामे नाम समावे गुरमुख भगत करो सदा प्राणी हृदय प्रगास होवे लिव लागे गुरमुख हर हर नाम समानी रहाउ हीरा रतन जिवे जे वे हर मानक बहु सागर भरपूर किया जिस वड भाग होवे वड पा होवे वड मस्तक तन गुरमुख गुरमत कड कड लिया रतन जवेर लाल हर नाम गुरकाद तली दिख लाया भागहीन मनमुख नहीं लिया त्रह त्रह नोले लाख छुपाया मस्तक भाग होवे तर लिखिया तन सतगुर सेवा लाए नानक रतन जवेर पावे तन तन गुरमत हर पाए राम कली महला चौथा राम जना मिल पया आनंदा हर निकी कत सुनाई दिनमुत मिल गई सब निकल सत्संगत मिल बुद पाई राम जान गुरमत राम बुलाए जो जो सुने कहे सुख मुक्ता राम जपत सुहाई राव जे वड भाग होवे मुख मस्तक हर राम जना पिताए दर्शन संत देव कर कृपा दाग दुख ले

मुख भुख काले जन गुर की पैज न पाई, दया दया कर रखो वर जियो हम दीन तेरी फिरनाई। हम बारक तुम पिता पर मेरे मन नानक बंश मिलाए। राम कली महला चौथा हर के सखा साजन के तनु पर हाथ बताए। गुरमुख साग से ही पर पाए कर कृपा मलावे। राम मुँह को हर जन मेल मन पावे।

हम हो बत चेरी दास दासन की मेरा ठाकर खुशी करावे। सेवक जन सेवे से बड़ पांगी हरद मन तन प्रीत लगावे। मैन प्रीति करे बाता कूड़ बोला कूड़ फल पावे। मौको तार कृपा जग जीवन दाते हर संत पगीले पावे। हाँ कांटो कांड बाढ़ सिर राखो जित नानक संत चढ़ावे। राम कली महला चौथा ये बड़ भाग होवे। मन मेरे जिन मिलदा तिन लाइए हर जन अमृत कंठ सर निके। बड़ भागी तित ना वाइए राम मोको हर जन काए लाइए। हाँ पानी पखा पीसो संसागे पगल मल मल मल तूर मुख लाइए। राव अर्जन वड्डे वड्डे वड ऊचे जो सतगर मेल मलाइए। सतगर जेवड अवर्ण कोई मेल सतगर पुरख ते आइए। सतगर सन परे तन पाया मैं ठाकर लाज रखाइए। एक अपने स्वाए आए बह गुर आगे ज्यो बगल समाध लगाइए। बगला ना काग नीच की संगत जाए करंगा डख मुख लाइए बिखू मुख लाइए। नानक मेल मेल पर संगत मल संगत हंस कराइए। राम कली महला चौथा सतगुर दया करो हर मेलो मेरे प्रीत प्राण हर राया। हम चेरी हुए लग गुर चानी जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखाया। राम मैं हर हर नाम मन पाया मैं हर बिन अवर न कोई बेला। बेली मेरा पिता माता हर सिखाया रहो मेरे अखन रहो मेरे अखन प्राण न रहे। बैन प्रीत बैन देखे मरे मेरी माया। तन तन वड भाग गुरु चरनी तन तन वड भाग गुरु चरनी ना तन तन वड आए हर घर मिल दर्शन पाया। मैं अवर न कोई सूझे बूझे मन हर जप जप पाया। नानहीन फिरे नानक ते तन कस कस नक विड़ाया। मोको जग जीवन जवाले स्वामी रदांतर नाम साया। नानक गुरु गुरु है पूरा मिल सतगुर नाम ते आया। राम कली महला चौथा सतगुर दाता वड्डा वड पुरख है जित मिले हर और तारे। जी दान गुर पूरे दिया हर अमृत नाम समारे। राम गुर हर हर नाम कंठ तारे गुरमुख कथा सुनी मन पाई। तन तन वड भाग हमारे रहो कोट कोट ते तीसे त्यावे ताका अंत न पावे पारे। हृदय काम काम नी मांगे हृद मांगो हाथ पसारे। आजा जप जप मड खडेरा गुरमर खोर तारे। जे वड भाग होवे तां जपिए हर भोजल पार उतारे। हर जन नित नित हर जन है हर राखे कंठ जन तारे। नानक पिता माता है प्रभ बारक है प्रत पारे। राग अंकली महला पंजमा घर पई लाइकार सतगुर प्रसाद। कृपा करो दीन के दाते मेरा बने अवगण ना बिचारो कोई। माटी का क्या तोपे स्वामी मानस की गत दे। मेरे मन सतगुर से रे मेरे मन सतगुर से सुख होई। जो इश्क सोई फल पावो फिर दुख न व्यापे कोई। रहाओ कांचे पांडे साजन वाजे अंतर ज्योत समानी। जैसा लिखत लिखिया तो करते हम ऐ तैसी गिरत कमाई। मन तन थाप किए सब अपना एहो आमन जाना। जन दिया सो चेतना वे मोह अंध लपटाना। जन किया सोई पर जाने हर का मैल पारा। भगत करी हर के गुण गावा नानक दास तुम्हारा। राम कली महला पंजमा पवो चरना तल ऊपर आवो। ऐसी सेवक मावो आप ते ऊपर सर जानो। तो दरगा सुख पावो संतो ऐसी कथ कहानी। सर्प विचर नर देव पवित्रा खन बोलो गुरमुख बानी। रहो पर पंच छोड़ सहज कर बैसो झूठा कहो न कोई। सतगर मिलो नवे नद पावो अनगद सत बलोई।
ਸਹਿਜ ਧਰਮ ਚਗਾਵੋ ਗੁਰਮ ਕਲੈ ਬਲਾਵੋ ਆਤਮ ਜੀਨੋ ਪਾਈ ਨਿਕ ਕਰ ਜਾਣੋ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਜ ਕਿਸ ਕਿਉਂ ਕਰ ਹਮ ਬੁਰਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਮਾਰਗ ਮੁਗਤਾ ਸਹਿਜੇ ਮਿਲੇ ਸੁਆਮੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੇ ਜਨ ਜਿੰਨੀ ਕਲ ਮੈਂ ਹਰ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰਮਾਨੀ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਵਤ ਹਰਖਣਾ ਜਾਵਤ ਦੁਖਾ ਨਾ ਬਿਆਪੇ ਮਨ ਰੋਗਣੀ ਮਨ ਰੋਗਣੀ ਸਦਾਨੰਦ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਸਗਲ ਵਿਯੋਗਣ ਵਿਯੋਗਣੀ ਇਹ ਵਿਦ ਹੈ ਮਨ ਜੋਗਣੀ ਮੋਹ ਸੋਗ ਰੋਗ ਲੋਗ ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਤਾਂ ਹਰ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗਣੀ ਰਾਉ ਸਵਰਗ ਪਵਿੱਤਰਾ ਮਿੱਤ ਪਵਿੱਤਰਾ ਪਿਆਲ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਗਣੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪੁੰਚੇ ਜਦ ਕਦ ਪੇਖੋ ਹਰ ਗੁਣੀ ਨਾ ਸਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਜਲ ਨਹੀਂ ਪਵਨਾ ਤਾਂ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵੇਦਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋ ਕਾ ਤਾਂ ਨਿਵਾਸਾ ਜਾਂ ਆਵਗਤ ਨਾ ਸਗਮ ਤਨੀ ਤਨ ਮਨ ਹਰ ਕਾ ਧਨ ਸਭ ਹਰ ਕਾ ਹਰ ਕੇ ਗਣ ਹਾਂ ਕਿਆ ਗਣੀ ਕੌਣ ਨਾਨਕ ਹਮ ਤੁਮ ਗੁਰ ਹੋਈ ਖੋਈ ਹੈ ਅੰਬੇ ਅੰਬ ਮਿਲੋ ਮਿਲੋ ਮੈਂ ਲੋਗਨੀ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਰਹਿ ਤੇਰੇ ਨਰਾਰੀ ਸਾਧਕ ਸਿਰਜਨ ਜਾਣੇ ਰਤਨ ਤੋੜੀ ਅੰਬਤ ਸਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਖਜਾਨੇ ਅਚਾਰਜ ਕਿਸ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕਹਿ ਨ ਜਾਈ ਬਸ ਗੋਚਰ ਪਾਈ ਰਾਓ ਮੂਲ ਮੂਲ ਸਤਿਗ੍ਰਹਿ ਮੂਲ ਸਤਿਗ੍ਰਹਿ ਖਜਾਨਾ ਚਰਜ ਕਿਸ ਨਾ ਜਾਈ ਬਸ ਗੋਚਰ ਪਈ ਪਾਈ ਰਾਓ ਅਮੋਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਰਨੇ ਜੋਗਾ ਕਿਆ ਕੋ ਕਹਿ ਸੁਨਾਵੇ ਕਥਨ ਕਹਿਣ ਕੋ ਸੋਝੀ ਨਾਹੀਂ ਜੋ ਪੇਖੇ ਤਿਸ ਮਨ ਆਵੇ ਜੋ ਪੇਖੇ ਤਿਸ ਮਨ ਆਵੇ ਸੋਈ ਜਾਣੇ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਗਤਨ ਤੇ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਹਰ ਆਪੇ ਪੂਰ ਭੰਡਾਰਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਰਤ ਮਨ ਚਾਖਿਆ ਤਰ

सीता हम कै सीता ती, एके एके एक तू ही, एके एक तू राया, तो कृपा ते सुख पाया राव। तू सागर हम हंस तुम्हारे, तुम मैं मानक लाला, तुम देव तिल संक न मानो, हम पूछो सदा निहाला। हम बारक तुम पिता हमारे, तुम सुमुख देव खीरा, हम खेले सब लाड लड़ावो, तुम सदगुणी गिरा। संपूर्ण पूरे संपूर्ण, हम ती संग काये, मिलत मिलत मिल रया रया, नानक न जाए। राम कली महला पंजवा, कर कर ताल पखावो नेम, माथे वजन बाबा करन करन मद बासुरी बाजे, जिवे तन गाजा, नित करे कहमनिया नाचे, आने कुंगर साजा। राम को नृत्यकारी, पेखे पेखनहारा, दया दयाला जेता सा शिंगारी। रहाओ अखाय मंडली तन सुबाई, ऊपर गण चिन्ह गगन चिंदुआ, पवन बिचोला करते केला, जल से उपत हुआ। पंच तात कर पुत्रा कीना, कित मलावा होवा, चंद सूरज चर जरे चिरागा, कौ चौ कुंट पीतर राखे, दस पंत पंच संगीता, एक पीतर साथे। तिन तिन पुन होए भाव दिखावे, सब समूह निरारी प्या पाखे, कह कर नित होवे दिन राती, कड़ कड़ वाजे तूरा। एक नचावे एक पवावे, काए जय होए तंतूरा, कौ नानक सो बार नाचे, जिस गुर पेते पूरा। राम कली महला पंजवा।

नील कोई सफेद, कोई कहे तुर्क, कोई कहे हिंदू, कोई बाछे पिस्त, कोई थर गिंदु, कहो नानक जिन हुकम पछाता, प्रसेव की तन पेर जात, प्रसेव सेव का तिन पेर जाता, राम कली महला पन्या, पवनी में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया।

लोनाड़ी सुअ है अस्ति अंबे गा कर दंड तरिया क्या तो योगी गर्भे परया जमनाथ जय गैर रानी तेरी पंखिंसा को दिहाई राहु गैरी पपूत लाई बैठा ताड़ी मेरी तेरी मुंदरा तारी मांगे टूका तरस न पावे नाथ छोड़ जाते लाज नावे चल चित योगी आसन तेरा सिंगी वाजे नित अदास रे अदसेरा गुरु गुरु की तै बूजे न पाई है फिर योगी आवे जाई जिसनो हुआ नाथ कृपाला रे रास हमारी गुरु गोपाला नाने खिंसा नामे बस्तर जन नानक जोगी हुआ अस्त हस्तर यों जपिया नाथ देव अरे नाई हुन पाया गुरु गुसाई राव राम कली महला पंजमा करन करा मन सोई आनंदी से कोई ठाकर मेरा सुगुड़ जाना गुरुमुख मिलया रंग मनम ऐसो रे हर रस मीठा गुरमुख विने वर ले रीठा रहाओ निर्मल जो तमृत हर नाम पीव तमर पे ने काम तन मन शीतल लगन नवारी अंदरू परगते संसारी क्या देव जा सब कुछ तेरा सद बलहा जाऊं लख बेरा तन मन जियो पैन से साजा गर पर वर कर पाते नीज नवाजिया खोल के वारा मैल बुलाया जैसा सा तैसा दिखलाया तो नानक सब पर्दा टूटा हों तेरा तू मैं मन मूठा राम कली महला पंजमा सेव कले लायो अपनी सेव अमृत नाम दियो मुख देव सगली चिंता अपन वारी तिस गुर को सद बलिहा को हाँ सद बलहारी काज हमारे पूरे सतगुर।

न जोनी पाई जाके अंतर पर घुटे आप ताको नाही दुख संताप लाल रतन तिस पाले मैं परया सगल नाम्बू जन ले तरया ना किस परम न दुविधा दूजा इसको एक निरंजन पूजा जक देखो आप दयाला को नानक प्र मिले साल राम कली महला पंजमा तंते छिड़की अपनी तारी पर की आग्ञा लगे लगी प्यारी जो कुछ करे सो मन मेरे मीठा तय चर जन डीठा अब मोए न जानी रे मेरी गई बलाएं बूझ गई तृष्ण मारी ममता गर पूरे देव समझाए रहाओ कर कर पारा के गुर सिंह झरना गर पर पकराए हर के झरना बीस बसवे जा मन में ठहराने ठहराने गर पार बनी कोई जाने जो जो किन्नो

दुखा आपे आप सरपत पाल नानक रतु रंग गोपाल हरण कली महला पंजमा मुक्ते परता टीका सहत हृदय ना राम नहीं पूर्ण रहत उपदेश करे कर लोक दरड़ावे अपना कहा आपना जय कमावे पंडित वेद विचार पंडित मन का क्रोध नवार पंडित रहाओ आगे कर अख साल ग्राम मन किन्नु दे दस बिसरा तिलक चिरावे पाई सो पाए पाई पाए लोक बचारा अंध कमाए खटकर मार असंतोती पाग ग्रह पड़े नत पोथी माला फेरे मंगे पपूत ये बिद कोय न तरियो मीत सो पंडित गुर शब्द कमाए त्रै गुण की ओस उतरी माए चतर्वेद।

ज रहे हार सिमरत जम कुछ न कहे रहाउ नैन हर सगल निरार्थ काम सेना रूपा माटी दाम गुर का शब्द जाप मन सुखा इया हुआ तेरो उजल मुखा कर कर साके वडे वडे रे कहनी ना किए अका काज माया पूरे हर हर नाम है हर हर नाम जप जपे हर हर नाम जपे जन कोए ताकि आसा पूर्ण होए हर पलतन को नाम धार संति जीता जन पार हर संत करे सुई परमान नानक दास ताके करवान राम कली महला पंजमा संचे

होए ना नाम जपे जिस आप जपाए सगल फला से सुख समाए रखन हारे रखो आप सगल सुखा सगल सुखा तुम प्रभ तुमरे हाथ जित लावो तुत लागे स्वामी नानक सब अंतर जामी राम कली महला पंजमा जो कुछ करे सोई सुख जाना मानस समझ सा संग पतियन डोलन ते चुका ठहराया सत माए माहे ले सत समाया दुख गया सब रो गया प्रभ की आज्ञा मन में मानी महापुरख का संग पया रहाऊ सगल पवित्र सर्व निर्मला जो वरताए सोई पला जा रखे सोई मुक्त थान जो जपाए सोई नाम हर सर तीस जा साध पग तर तै बैकुंठ जा ना उचरे सर्वानंद जब दर्शन पाइए राम गुणानत नित हर गाइए आपे घट घट रहा व्याप दयाल पुरख प्रगट प्रताप कपट खलाने परम नाथे दूरे नानक पर पेठे पूरे राम कली महला पंजमा कोट जाप ताप विश्राम रद रद बद सिद्ध सुर ज्ञान अनेक रूप रंग भोग रसे गुरमुख नाम निमखरि दे वसे हर कह नाम की वड्याई कीमत कह न जाई राव सूर वीर तीज मत पूरा सहस मतन तन्हा गैर गिलीरा सदा मत

खंड खंड जो मांगे सोए सो भूखा रहे सुसंग राचे कुछ सो कछु ना लहे इसे त्याग सत्संगत करे वडभागी नानक हो तरे राम कली महला पंजमा आत्म राम सर्व मैं तीख पूर्ण पूरया परवे एक रतन मूल दे मैं जान अपनी वसना तू आप जान ती अमृत।

सोते है पूरा दुष्कर्म तम तन तन तारण प्रतिरो नाऊ एक सन गही मंदिरे सदबिंदु जाना ठाउ रहाउ जप जा जी माँ तेरा नाऊ आगे दरगाह पाँव ठाऊ दुख न दे सुख दे रामन ते जाए दुर्मत बंसे राचे हर नाय चरण कमल से लागी प्रीत गरपूरे निर्मल रीत पौपागा निरप मन बसे अमृत नाम नाम रसना नित जपे कोट जन्म कह काटे फाहे पाया लाभ सुचा तन लाहे सत टूट न आवे खट पंडार।

हर का नाम आग निदान ता दरगाह पावे मान गुर का बचन जपन जप मंत यह भगत सार तात सतगुर पै दयाल नानक दास निहाल नाम कली महला पंजमा होवे सोई पलमान आपन तज अभिमान दै रैन सदा गुण गा गण गाओ पूर्ण ही सुआव आनंद कर संत हर जाप छाड़ शिवा ध्यान पर बहुत चित राई गुर का जप मंत निर्मल रहो एक की करा।

का प्रताप राम कली मोहल्ला पंचमा व्यथा परवासा लोक ठाकर मेरा ठाकर पर तेरी टेक बर छुटिया सब आस अजंत ठाकर पेटे गुंतास इको नाम ते आए मन मेरे काज तेरा होवे पूरा हर हर हर गुण गाए मन मेरे रहाओ तुम्ही कारण करन कारण करन चरण कबल हर चरण हर चरण मन तन हर वही त्याया आनंद हर रूप दिखाया तैसी की ओट सदीव जाके कीन है जीव सिमरत हर करत निदान रखन हर दान सर्पी रेन होवे जी सर्प की रेन होवे जे आप मिटा आप मिटाए लीजे अंडन त्याये नाम सफल सफल नानक हे काम राम कली महला पंजमा कारण करन करीम सर प्रत पाल रहीम अल्लाह लख पार खुद खुदाए वड बेस बेसमार ओह नमो भगवान सुख साई खल खाल करवरया सर्व ठाई राहो जग नहाथ जग जीवन माधो पंजा लदमाए अराधो रिखी के सुख पाल गोविंद पूर्ण सवतर मुकांद मेहरवान मूला तू ही एक पीर पै कम पै कम बर तेग दिला दिल का मालिक करे हाथ कुरान कते ते पाक नारायण नर हर दयाल रमत राम कड़ कड़ दार वासुदेव वास्तु।

महला पंचमा पूर्व जन्म के बंसे पाप हर हर जप नाहि संताप करके चरण कमल मन से महाविकार तन तहि सब नसे गोपाल को जस गाओ प्राणी कथ कथा साची परपूर्ण होई ज्योति ज्योत समानी रहाओ तृष्णा पूख समनासी संत प्रसाद जपिया विनासी रैन दंस।

0: ऊपर गास ऐसा समर्थ हर जियो आप निमख न बिछरे जीन भगतन कै आठ पैर मानता को जापू रहाऊ प्रथमे माखन पासे दूध मैल नकिन साबन सूद पैते नर प्रोडक्टा फिरे हुंदी को अनहुंदी हिरे देही गुप्त देही दिसे सगले साज करत जगदीसे ठगन हार अनठग दा ठगे बन वखर फिर फिर उठ लागे सभा सभा मैल करो बिख्यान सिमरत सात वेद प्राण ब्रह्म विचार विचारे कोई नानक ताकी परमगत होए राम कली महला पंजमा जो तिस पावे सो थिया सदस दा हर पीछे नाही प्रभ बिन नाही आन बिया राव पुत्र पुत्र कलतर लक्ष्मी दिसे इन मह कृष्ण संग लिया दिखे ठोगरी खाए पलाना माया मंदिर त्याग गया निंदा कर कर बहुत गुस्सा गर्भ जोन में है चरत पया पूर्व कमाने चोडे नाही जमदूत गिरा सिंह महा पया बोले झूठ कमावे अवरा कृष्ण न बुझे बहुत हया साध रोग जाया नानक दास कंठ लाए राखे कर कृपा पार ब्रह्म मया
1: राम कली महला पंजवा ऐसा पूरा गुर देओ सहाई जाका सिमरन बिरथा ना जाई रहाओ दर्शन पेखत होए निहाल जाकी सूर काटे जमकाल चरण कमल बसे मेरे मान रे तारित सवारे सगले तन के जाके मस्तक राखे हाथ प्रभ मेरो अनाथ को नाथ पतित उदाहरण कृपा निधान सदा सदा जाइए कुर्बान निर्मल मंत दे जिस दान तजे विकार भिनसे अभिमान एक त्याइए साध कै संग पाप बिनासे नाम कै रंग गुर परमेश्वर सगल निवास घट घट रव रहिया गुणतास दर्श देहे तारो प्रभ आस नित नानक चितवै सच अरदास राग राम कली महला पंजवा घर दूजा धुप दे कुंकार सतगुर प्रसाद गाभो राम के गुण गीत नाम जपत परम सुख पाइय आवा गौन मिटे मेरे मीत रहाओ गुण गावत होवत परगास चरण कमल में हुए निवास सत संत संगत में हुए उधार नानक भव जल उतरस पार राम कली महला पंजवा गुरपुरा मेरा गुरपुरा राम नाम जप सदा सुहेले सगल विनाशे रोग कूरा रहाओ एक अराधो साचा सोए जाकी सरन सदा सुख होए नींद सुहेली नाम की लागी भूख हर सिमरत बिनते सब दुख सहज आनंद करो मेरे भाई गुरपुरै सब चिंत मिटाई आठ पहर प्रभ का जप जाप नानक राखा हुआ आप राग राम कली महला पंजवा पड़ताल घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद नर नर हर नमस्कार जलन थलन बसुद गगन एक एकंकार रहाओ हरन तरन पुन पुन है करन नह गिरह निरंहार गंभीर तीर नाम हीर ऊच मूच अपारं करन केल गुण अमोल नानक बलिहारं राम कली महला पंजमा रूप रंग सुख सुगंध भोग त्याग चले माया छले कनिक कामिनी रहाओ भंडार दर्ब अर्ब खर्ब पेख लीला मन सुधार नह संग गामनी सुत कलत्र प्रात मीत उर्ज पर्यो परम मोहे एह बिरख छामनी चरण कमल सरन नानक सुख संत पावनी एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग राम कली महला नौमा तिप देरे मन ओट लेहो हर नामा जाके सिमरन दुरमत नासे पावे पद निर्बाना रहाओ बड भागी ते जन को जानो जो हर के गुण गावे जन्म जन्म के पाप खोए कै फुन बैकुंठ सिधावे अजामल को अंतकाल मह नारायण सुध आई जागत को जोगी सर बाचत सोगत छिन मह पाई नाहिन गन नाहिन गुन नाहिन कछु विद्या धर्म कौन गज कीना नानक बिरद राम का देखो पै दान तेह दीना राम कली महला नौवा साधो कौन जुगत अब की जय जाते दुर्मत सगल बिना सह राम भगत मन भीजै रहाओ मन माया मह उर्ज रहे है बूझे नह कछु ज्ञाना कौन नाम जग जाके सिमरै पावै पद निर्बाना पय दयाल कृपाल संत जन तब एह बात बताई सर्व धर्म मानो तह किए जेह प्रभ कीरत गाई राम नाम नर निस बासुर मह निम्ख एक उर तारै जम को त्रास मिटै नानक तेह अपनो जन्म सवारै राम कली महला नौवा प्राणी नारायण सुध लेह छिन छिन औध कटै दिनस छिन छिन औध कटै निस बासुर बिरथा जात है देह राहाओ तरनापो बिखियन स्यो खोयो बालपन अज्ञाना व्यर्द पयो अजू नहीं समझे कौन कुमत उर जाना मानस जन्म दियो जह ठाकुर सोते क्यों बिसरायो मुक्त होत नर जाके सिमरै निमखना ता कहो गायो माया को मद महा करत है संग ना काहू जाई नानक कहत चेत चिंता मन होए है अंत सहाई राम कली महला पहला अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद सोई चांद चढ़े से तारे सोई दिनियर तप्त रह सात अरती सो पौन चुलारे जुग जिय खेले थाव कैसे जीवन तलब निवार होवे परवाना करे ते झाना कल लखन विचार रहाओ कित देश ना आया सुनिए तीरथ पास ना बैठा दाता दान करे तह नाही महल उसार ना बैठा जे को सत करे सोची जै तप कर तप ना होई जे को नाओ लय बदनावी काल के लखन एई जिस सिकदारी तिसे खुआरी चाकर के हे डरना जा सिकदारै पवै जंजीरी ता चाकर हथो मरना आख गुणा कल आइए तेह जुग केरा रहया तपावस जे गुण देह तपाइए रहाओ कल कल वाली सरानी बेड़ी काजी कृष्णा हुआ बाणी ब्रह्मा वेद अथर्बण करणी तीरत लहया पत विण पूजा सत विण संजम जात विण काहे जनेऊ नाभो तोभो तिलक चढ़ावो सोच विण सोच न होई कल परवान कतेब कुरान पोथी पंडित रहे पुराण नानक नाओ पया रहमान कर करता तू एको जान नानक नाम मिले वडियाई एदू उपर करम नहीं जे कर होदे मंगण जाइए फिर ओ लामा मिले तही राम कली महला पहला जग पर बोधे मड़ी बधावे आसन त्याग काहे सच पावे ममता मोह कामन हितकारी ना अवतूती ना संसारी जोगी बैस रहो दुविधा दुख भागै घर घर मागत लाज न लागै रहाओ गावे गीत ना चीने आप क्यों लागी ने वरै परताप गुर कै शब्द रचै मन पाए बिख्या सहज विचारी खाए भस्म चढ़ाए करे पाखंड माया मोहे सहे जम डांड फूटे खापर भीख ना पाए बंधन बाध्या आवै जाए बिंद ना राखे जती कहावे माई मागत त्रै लोभावे निर्दया नहीं जो तू जाला बूढ़त बूढ़े सर्व जन जाला पेख करे खिंता बहो थटुआ व झूठो खेल खेल बहु नटुआ अंतर अगन चिंता बहु जारे विण कर माँ कैसे उतरस पारे मुंद्रा फटक बनाई कान मुक्त नहीं विद्या विज्ञान जेहवा इंद्री साध लोभाना पशु पय नहीं मिटे नीसाना त्रिविद लोगा त्रिविद जोगा शब्द विचारे चूकस सोगा ऊजल साच तो शब्द होए जोगी जुक्त विचारे सोए तुझ पह नौनिद तू करण जोग था पुथापे करे सोहोग जत सत संजम सच सुचीत नानक जोगी त्रिभवन मीत राम कली महला पहला खट मट देही मन बैरागी सुरत शब्द धुन अंतर जागी वाजै अनहद मेरा मन लीना।